0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

सुनते हैं शांत। वंदे दक्षिण कैलास वंदे हेमाग्निमपी वंदे वेणुवनेश्वरम वंदे श्रीमत्कौंतीमहेश्वरी वंदे श्रीमूललिंकं च श्रीमत्ताम्रसभापतिं शिवगामी समो वेदं